0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: हरिकोट दोलखा
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैनी बेथोपलो 7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन् 2026 सेप्टेम्बर 5 तारीख भाद्र 20 गते शनिबार आज श्री कृष्ण रथ यात्रा नवमी तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पयभरी

सारे छयाहुन राजा नमस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परेका घरे मंडाखुन सबले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

आनन्द कन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम सित बोलिए श्री आनन्द कन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।